0: সাক্ষাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, জনপ্রতিনিধিরা, কর্পোরেটর হতে পারেন।
1: और मध्य भारत के हिस्सों में रोका
2: बे दिवस में दक्षिण गुजरात में पहुंची सके
3: दिन में निकट पर जाए थे।